0: 94 MHz कृष्णसार जत्तिकै तेज
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 8 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी
3: यो कृष्णसार एफएम
0: 94 मेगाहर्ज कृष्णसार जत्तिकै तेज

0: 94 MHz कृष्णसार जत्तिकै तेज
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 9 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी
3: यो कृष्णसार एफएम
0: 94 मेगाहर्ज कृष्णसार जत्तिकै तेज

0: आकर्षक उपहार पनि
1: घर रंगाओ, खुशी बढाओ, उपहार जित्ने अवसर पाओ।
2: बर्जो पेन्स।
3: यो कृष्ण सार एफएम
4: 94 मेगाहर्ज कृष्ण सार जत्तिकै तेज।

0: मेगाहर्ज कृष्णसार जत्तिकै तेज
1: टाइम चेक
2: यो कृष्णसार एफएम
0: 94 मेगाहर्ज कृष्णसार जत्तिकै तेज।

0: मेगाहर्ट्ज कृष्णसार जत्तिकै तेज।
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 12 बजेको छ।
2: Extreme energy drink. Taste the difference. Feel the energy.

0: जनता केवल पांच दशक देखि
1: होइन कौशल्या मेमोरियल अस्पताल यही थियो त।
2: ओहो बाजे, अब उता आएन, ठ्याक्कै यता हेर्नुहोस् त पूर्वपट्टि।
3: हाम्रा सेवाहरू इन्टरनल मेडिसिन तथा फ्यामिली फिजिसियन सेवा, हार्ट जोड्नी तथा नसा रोग विशेषज्ञ सेवा, नाक कान घाँटी रोग विशेषज्ञ सेवा, प्रसूति तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ सेवा, नवजात शिशु तथा बाल रोग विशेषज्ञ सेवा, नवजात शिशु तथा बाल रोग विशेषज्ञ सेवा।

0: प्रसूति व स्त्री रोग के सकु उपचार, नसा व हड्डी रोग के सकु उपचार, मस्तिष्क व मानसिक रोग के सकु उपचार, छाला रोग के उपचार, नाक कान घाँटी रोग के सकु उपचार सेवा देती आइल बा।
1: ओस्तक, सुगर, ब्लड प्रेसर, मुटु रोग, पेट, छाती, कलेजो सम्बन्धी सकु उपचार, प्याथोलोजी ल्याब सेवा, भिडियो एक्सरे, डिजिटल एक्सरे ओ और सकु सेवा सहित गुणस्तरीय अस्पतालक संगे हरेक महिनाक अन्तिम शुक्रबार काठमाडौँ मेडिसिटी अस्पताल के सुगर ओ थाइरोइड रोग विशेषज्ञ डाक्टर सुमन ब्राल ऐना जानकारी फेन कराइदी।
0: नोट, ई अस्पतालम कार्यरत सक्कु डाक्टरन से हरेक महिनाक अन्तिम शनिबार निशुल्क ओपीडी सेवा देना संगे जाँचमा 20% विशेष छुट के व्यवस्था करल बा। नेपालगंज नेशनल अस्पताल बीपी चोक नेपालगंज, संपर्क नंबर 081536465, 98249806665 ओ 98482804665।

0: नाक कान र घाँटीका रोगीहरूको लागि विशेष सूचना।
1: भेरी अञ्चल अस्पतालमा लामो समय काम गरी सेवा निवृत्त प्रमुख कन्सल्टेन्ट ईएनटी विशेषज्ञ डाक्टर रमेश कुमार श्रेष्ठ र हाल भेरी अञ्चल अस्पतालमा नाक कान घाँटी विभागमा कार्यरत ईएनटी कन्सल्टेन्ट डाक्टर सगुन श्रेष्ठसँग उपचारको लागि मिलिजुली मेडिकल हल इदगाह रोड नेपालगञ्जमा हप्ताको सातै दिन सेवा उपलब्ध छ। हाम्रा थप सेवाहरू एक्सरे, इन्डोस्कोपी, प्रयोगशाला, अडियोग्राम तथा आवश्यक परेको खण्डमा बिरामीलाई अपरेसनको पनि व्यवस्था छ। विस्तृत जानकारीको लागि मिलिजुली मेडिकल हल इदगाह रोड नेपालगञ्ज, सम्पर्क फोन नम्बर 081531380, मोबाइल 98580304 र 98480213।
2: नमस्कार और स्वागत है कार्यक्रम द्वारे मुहारे में। आप लोग सुना चाहते हैं अपने ही प्रिय स्टेशन रेडियो क्रेसर एफएम 94 मेगाहर्ट्ज़ से प्रसारित वाला कार्यक्रम द्वारे।
3: हाय प्रज्ञा, सवेरे से रेडियो लिए बैठो, कहा सुना था?
4: अरे मामा, तुम नहीं जानत हो, कार्यक्रम द्वारे मुहारे आवत है।
3: ये कब और कौने दिन आवत है प्रज्ञा?
4: सुनो, बताई थे मामा, इतवार, मंगल, बुध के आवत है।
3: हाँ, आप लोग कार्यक्रम सुनेकर न भूला जी, अपने प्रिय संचालिका चंदा जी के साथ में कार्यक्रम द्वारे मुहारे।
2: बदलना आता नहीं हमें मौसम की तरह, बदलना आता नहीं हमें मौसम की तरह, हर एक रूप में तेरा इंतजार करते हैं। बदलना आता नहीं हमें मौसम की तरह, हर एक रूप में तेरा इंतजार करते हैं।
3: कार्यक्रम द्वारे मुहारे हफ्ता में तीन दिन, इतवार के, बुध के, मंगल के, दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक कार्यक्रम सुने ना भूला जाए, धूम धड़ाका चंदा जी के साथ में।

0: ओहो आज डाई हो नहीं मजा लागत हो मजा से दवाई करे ना कहतो
1: ये तो ओकर लाग कांति आरोग्य अस्पताल जाई ना पश्चिम नेपाल के अनुभवी व उत्कृष्ट विशेषज्ञ चिरफार कैना डॉक्टर से विश्वासिलो स्वास्थ्य सेवा यह कांति आरोग्य अस्पताल नेपालगंज में मिलत
0: ए बात ठीक कहलो साच्ची की अस्पताल में का का सुविधा मिलत
1: वहाँ त 24 घंटा इमरजेंसी सेवा दैनिक ओपीडी सेवा दूरबीन और लेजर प्रविधि से शल्यक्रिया जरल घाव उपचार करना संगे NICU PICU ICU हाईटेक ऑपरेशन थिएटर हो सुरक्षित प्रसूति सेवा फे वहाँ पा जाइत छोट बच्चा हो भरखर जन्मल बच्चन के सामान्य से लेके जटिल रोग संगे सकु प्रकार के रोग के उपचार फे उहाँ कई जाइत
0: ए ओसिनो कला से उहाँ जाई मन फे ढुक्क हुइना चाहल रह
1: हो तो स्वास्थ्य हेरचाह कहले ठीक ठाउँ रोजना हो कान्ति आरोग्य अस्पताल सुर्खेत रोड नेपालगंज सक्कुमेरिक उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा अक्क ठाउँमा सम्पर्क नम्बर 081-535-717 कान्ति आरोग्य अस्पताल अपने हुकरन के स्वास्थ्य हमार स्नेहा
0: कान के समस्या बा उपचार करायला कहाँ ले जिना हो
1: बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहार केन्द्र मा जाई न वहाँ ता अनुभवी चिकित्सक को वरिष्ठ कान स्वास्थ्य प्राविधिक से हरेक दिन कान के परीक्षण हुईत ओतरकेल कहाँ हो वहाँ तो लंबा समय से कान पक्ती रहना जीर्ण रोग काने ढूसी कान खजोइना कान कम सुनना कान दम्मा हुईना विटामिन के उपचार और परामर्श वो लंबा समय से कान पकती रहले कान के जालिम पाल परल कान हड्डी खैना रोग के ऑपरेशन कई के उपचार हुई वाकर संगे कान कम सुनना विटामिन के लाग कान में लगाइना सस्ता व महंगा ढेर प्रकार के कान के मशीन विटामिन के रोजाई अनुसार के उपलब्ध फे करा जाए जस्ते BTE CIC RIC जैसी मशीन फे वहाँ मिलत
0: ए ओसिड हो कल से बुढ़ू हो वहाँ ले जाके उपचार करेले से वजह से सुनो से कही ता
1: एकदम समय में उपचार करेले से उपचार संभव बा बागेश्वरी स्वास्थ्य सेहार केंद्र प्राली नेपालगंज छ फुलटेकरा आर्मी ब्यारेक के सामने राप्ती रोड बांके संचालक पूरन चौधरी संपर्क नंबर 98-84-20-697 98-85-23-697 वो 98-014-83-697 बहिरोपण निवारण कार्यक्रम में सहभागी हुई नियमित कान के जांच करी
0: खुशी के खबर हमार शहर नेपालगंज में ढेर बरस से सेवा देती आयल नेपालगंज नेशनल अस्पताल में ढेर विशेषज्ञ डॉक्टरन से रोज दिन स्वास्थ्य सेवा देती आयल बा ई अस्पताल में रोज दिन ढेर विशेषज्ञ डॉक्टरन से ओपीडी सेवा देना के संगे ढेर सेवा देती रलेक जानकारी कराई
1: जस्तक सर्जरी के सक्कु उपचार प्रसूति व स्त्री रोग के सक्कु उपचार नशा व हड्डी रोग के सक्कु उपचार मस्तिष्क व मानसिक रोग के सक्कु उपचार छाला रोग के उपचार नाक कान घाटी रोग के सक्कु उपचार सेवा देती आयल बा
0: ओस्तक सुगर ब्लड प्रेशर मुटु रोग पेट छाती कलेजो संबंधी सक्कु उपचार पैथोलॉजी लैब सेवा वीडियो एक्सरे डिजिटल एक्सरे और सक्कु सेवा सहित गुणस्तरीय अस्पतालक संगे हरेक महीनक अंतिम शुक्रवार काठमांडू मेडिसिटी अस्पताल के सुगर और थायराइड रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुमन ब्राल ऐना जानकारी फेन कराई
1: नोट ई अस्पतालम कार्यरत सक्कु डॉक्टरन से हरेक महीनक अंतिम शनिवार निशुल्क ओपीडी सेवा देना संगे जांच में 20% विशेष छूट के व्यवस्था करल बा नेपालगंज नेशनल अस्पताल बीपी चौक नेपालगंज संपर्क नंबर 081-536-465 98-239-80-665 वो 98-482-80-465

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक एक बजेको छ.
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी.

0: बाबा के कान पिरात है, दवाई करावे खातिर कहाँ ले जाई।
1: बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहर केंद्र जाओ न, यहाँ अनुभवी विशेषज्ञ और वरिष्ठ कान स्वास्थ्य प्राधिक लोगन से हर एक दिन कान परीक्षण किया जाता है। इतन कहाँ, यहाँ तो लंबे समय से कान पकते आवा, जीर्ण रोग, कान में यहाँ ढूसी भवा, कान खजुआब, कान से कम सुनाई देव, कान बंद हो, बीमारी लोगों के दवाई दरमत और सुझाव सलाह देते हैं। और साथ ही लंबे समय से कान पकते आवा, कान के जाली में छेद भवा, कान के हड्डी गले वाला रोग के शल्य क्रिया द्वारा दवाई करत हैं। साथ ही कान कम सुनने वाले बीमारी लोगों के यहाँ कान में लगावे वाला सस्ता से लेके महंगा महंगा तक मेरे मेरे के मॉडल के कान की मशीन हेयरिंग एड बिरामी लोगों के इच्छा अनुसार उपलब्ध करावत है। बीटी, सीआईसी, आरआईसी जैसन मशीन भी यहाँ उपलब्ध है।
0: ए अस है तो बाबा के यहाँ ले जाए के दवाई करावे से बढ़िया से सुने लगी है तो।
1: हाँ तो समय में यहाँ दवाई करावे से दवाई दरमत संभव है। बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहर केंद्र प्राली नेपालगंज छ फुलटेकरा आर्मी ब्यारेक के सामने राप्ती रोड बांके। संचालक पूरन चौधरी। संपर्क नंबर 9848020697, 9858023697 और 9804483697। बहिरोपण निवारण कार्यक्रम में यहाँ सहभागी हुआ जाए, नियमित रूप से कान के जांच करावा जाए।
0: खुशी के खबर, हम लोगन के अपने शहर नेपालगंज में यहाँ सालों से सेवा देते आवा रहा नेपालगंज नेशनल अस्पताल में यहाँ विशेषज्ञ डॉक्टर लोगन से दैनिक रूप में यहाँ तमामन स्वास्थ्य सेवा प्रदान होते आवा है।
1: ये अस्पताल में यहाँ दैनिक रूप से तमाम मेर के विशेषज्ञ लोगन से ओपीडी सेवा हो, एक साथ हैं तमाम मेर के सेवा होत रहा जानकारी करावा चाहा जात है। जैसे सर्जरी संबंधी संपूर्ण इलाज,
0: प्रसूति और महिला लोगन संबंधी संपूर्ण इलाज,
1: नस और हड्डी रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
0: मस्तिष्क और मानसिक रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
1: चर्म रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
0: नाक कान और गटई संबंधी संपूर्ण इलाज,
1: शुगर, ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, पेट, छाती, कलेजा संबंधी संपूर्ण इलाज,
0: पैथोलॉजी लैब संबंधी संपूर्ण चेक जांच किया जाते है,
1: वीडियो एक्सरे, डिजिटल एक्सरे और संपूर्ण सेवा सहित गुणस्तरीय अस्पताल के साथ हैं। हर एक महीना के अंतिम शुक्रवार काठमांडू मेडिसिटी अस्पताल से शुगर और थायराइड रोग के इलाज के खातिर डॉक्टर सुमन बराल आवश्यक जानकारी भी करावा जाता है।
0: नोट, ई अस्पताल में यहाँ कार्यरत संपूर्ण डॉक्टर लोगन से प्रत्येक महीना के अंतिम शनिवार निःशुल्क ओपीडी सेवा ले साथ जाँच में यहाँ 20% छूट के व्यवस्था किया गया है।
1: संपर्क नंबर 081536465, 9829808665 और 9842808465।
2: वाओ, प्लस टू परीक्षा पनि पास भयो, अब कुन कलेज में भर्ना हुने होला?
3: लहै बधाई छ, अनि तिम्रो उज्जवल भविष्य का लागि उत्कृष्ट विकल्प नेपालगंज बहुमुखी कैंपस एनएमसी छ नि।
2: ए हो र, त्यहाँ के पढ्न पाइन्छ त, अनि त्यहाँको विशेषता पनि भन्देऊ न।
3: त्यहाँ ब्याचलर अफ बिजनेस स्टडीज बीबीएस तथा एसीसीए कार्यक्रमका लागि भर्ना खुला भइसकेको छ। दक्ष तथा अनुभवी शिक्षकद्वारा गुणस्तरीय शिक्षण, वातानुकूलित एसी कक्षा कोठा, समृद्ध पुस्तकालय, अतिरिक्त क्रियाकलाप, नियमित फिल्ड भिजिट तथा औद्योगिक भ्रमण, आधुनिक शिक्षण वातावरण र विद्यार्थी मैत्री व्यवस्थापन सहित आफ्नो उज्जवल भविष्यको यात्रा सुरु गर्न सकिन्छ।
2: ल तिमीलाई धेरै धेरै धन्यवाद, त्यसो भए म पनि यही भर्ना हुन्छु।
1: हजुर, प्लस टू परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण गर्नुभएका सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई हार्दिक बधाई तथा शुभकामना। उच्च शिक्षाको उत्कृष्ट गन्तव्य नेपालगञ्ज बहुमुखी क्याम्पस एनएमसीमा ब्याचलर अफ बिजनेस स्टडिज बीबीएस तथा एसीसीए कार्यक्रमका लागि भर्ना खुल्ला भइसकेको छ।
2: नेपालगञ्ज बहुमुखी क्याम्पस एनएमसी आदर्श ग्रुपद्वारा सञ्चालित, ठेगाना नेपालगञ्ज 10 बाँके औद्योगिक क्षेत्रको ठिक अगाडि। थप जानकारीका लागि सम्पर्क 9858036577, 9858028195 र 9858036611। नेपालगञ्ज बहुमुखी क्याम्पस एनएमसी, सफल भविष्यको बलियो आधार।

0: रेडियो कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्ज कृष्णसार जस तेज।
1: नमस्कार और स्वागत है कार्यक्रम दुआरे मुहारे में। आप लोग सुना चाहते हैं अपने ही प्रिय स्टेशन रेडियो कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्ज से प्रसारित वाला कार्यक्रम दुआरे।
2: हाय प्रज्ञा, सवेरे से रेडियो लिए बैठो, कहाँ सुना था?
3: अरे मामा, तुम नहीं जानत हो, कार्यक्रम दुआरे मुहारे आवत है।
2: ये कब और कौने दिन आवत है प्रज्ञा?
3: सुनो बताई थे मामा, इतवार मंगल बुध के आवत है।
2: हाँ, आप लोग कार्यक्रम सुने कर ना भूला जी, अपने प्रिय संचालिका चंदा जी के साथ में कार्यक्रम दुआरे मुहारे।
1: बदलना आता नहीं हमें मौसम की तरह, बदलना आता नहीं हमें मौसम की तरह, हर एक रूप में तेरा इंतजार करते हैं। बदलना आता नहीं हमें मौसम की तरह, हर एक रूप में तेरा इंतजार करते हैं।
2: कार्यक्रम दुआरे मुहारे हफ्ता में 3 दिन, इतवार के, बुध के, मंगल के, दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक कार्यक्रम सुने ना भूला जाए, धूम धड़ाका चंदा जी के साथ में।

0: रेडियो कृष्ण सार एफएम 94 मेगाहर्ज मा
1: कार्यक्रम द्वारे मुहारी
0: नमस्कार और स्वागत है कार्यक्रम द्वारे मुहारी मा। ये कार्यक्रम के प्रायोजक हैं बर्जर पेंट्स।
2: रंग बहार
3: बर्जर संगे उपहारे उपहार बम्पर मा यामाहा रेजियार
2: बर्जर पेंट्स ले घर रंगाउनु होस् र लकी ड्र मार्फत यामाहा रेजियार 125 स्कूटर बम्पर उपहार जित्ने मौका पाउनु होस्।
3: साथै 65 इन्च को स्मार्ट टिभी रेफ्रिजरेटर वाशिङ मशीन लगायत 350 भन्दा बढी आकर्षक उपहारहरु पनि। घर रंगाउ खुशी बढाउ उपहार जित्ने अवसर पाउ
2: बर्जर पेंट्स।
0: हाँ तो साथी आप लोग सुना जाते अपने प्रिय स्टेशन रेडियो के सारे एफएम 94 मेगाहर्ट्ज से प्रसारित वाला कार्यक्रम द्वारे मुहारी। आप लोग के साथ महन आप लोग के प्रिय साथी चंदा। और साथी आज के दिन मंगलवार के दिन कार्यक्रम प्रायोजक द्वारे मुहारे माँ आप लोगन के समक्ष भावना से संबंधित गीत संगीत लेके उपस्थित हुए हैं, मतलब आए हैं आप लोगन के समक्ष और प्यारा प्यारा हिंदी गीत आप लोग सुन के आनंद लिया जाए। और आज के दिन मंगलवार के दिन आप लोगन के समक्ष भावना संबंधित जो लेके आवा जाते गीत संगीत वही आप लोग सुन सका जाते आज के दिन।

दिले नादान तुझे हुआ क्या है, दिले नादान तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। दिले नादान तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दिल की, इस दर्द की दवा क्या है। जबकि तुझ बिन नहीं कोई मौजूद, जबकि तुझ बिन नहीं कोई मौजूद, फिर ये हंगामा क्या है। हमको उनसे वफा की है उम्मीद, हमको उनसे वफा की है उम्मीद, जो नहीं जानते वफा क्या है। जान तुम पर निसार करते हैं, जान तुम पर निसार करते हैं, मैं नहीं जानता दवा क्या है। दिले नादान तुझे हुआ क्या है, दिले नादान तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है।

0: भैया बहुत दिन से महिनवारी में यहाँ गड़बड़ी, सफेद पानी बहाव और पेट पीराव समस्या से बहुत दुख पाए चुके हैं। कहाँ जाए तो बढ़िया रही।
1: हम भी पहले गैस्ट्रिक, बवासीर और पेट के समस्या से बहुत परेशान रहे। बाद में यहाँ नेपालगंज के मेडिकेयर क्लिनिक गए। वहाँ मर्दे और मेहरुए दोनों लोगों के समस्या के उपचार और ऑपरेशन एक ही जगह होते है। अनुभवी विशेषज्ञ डॉक्टर से सेवा मिले के बाद अब बहुत आराम हुआ है।
0: सही, वहाँ का सेवा मिलत है तो भैया?
1: सुनो, हुआ औरतन के बांझपन, सफेद पानी, महीनावारी में गड़बड़ी, गर्भवती जांच, बच्चादानी और स्तन संबंधी समस्या के उपचार होते है। और पुरुष या अन्य बीमारी लोगों के खातिर गैस्ट्रिक, बवासीर, हर्निया, अपेंडिक्स, थायराइड, पित्त थैली और शरीर में यो गिल्टी और तमाम मेर के लैप्रोस्कोपिक और लेजर सर्जरी सेवा भी उपलब्ध है।
2: हाँ, मेडिकेयर क्लिनिक में यहाँ वरिष्ठ लैप्रोस्कोपिक दूरबीन और लेजर सर्जन डॉक्टर कमर हसन अंसारी और वरिष्ठ लैप्रोस्कोपिक स्त्री और कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमीरुन निशा से सेवा देते हैं। आप भी आज ही कोई भी चेक जांच और ऑपरेशन के खातिर नाम दर्ता कह के तहे दिल हुआ जाए।
1: मेडिकेयर क्लिनिक नेपालगंज उप महानगर पालिका वाड़ा नंबर 11 बीपी, नेपालगंज उप महानगर पालिका वाड़ा नंबर 11 बीपी चौक।

0: Janta Cable, 5 दशक देखी।
1: विश्व सारे फिल्म लगाए जो हमार पिया, विश्व सारे फिल्म लगाए जो हमार पिया।
2: रेडियो कृष्ण सार FM 94 मेगाहर्ज, कृष्ण सार जस तेज।
3: रेडियो कृष्ण सार FM 94 मेगाहर्ज मा।

0: साथी व्यापारी विश्राम के बाद फिर आप लोगों के स्वागत है कार्यक्रम दुआरे मोहरे में। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं बर्जर पेंट्स।
1: रंग बहार रंग बहार
2: बर्जर संगे उपहारे उपहार बम्पर मा यामाहा रेजियार
1: बर्जर पेंट्स ले घर रंगाउनु होस् र लकी ड्र मार्फत यामाहा रेजियार 125 स्कूटर बम्पर उपहार जित्ने मौका पाउनु होस्।
2: साथै 65 इन्च को स्मार्ट टीवी रेफ्रिजरेटर वाशिंग मशीन लगायत 350 भन्दा बढी

सिवाय तेरे कुछ भी न दिखाई दे, सिवाय तेरे कुछ भी दिखाई न दे, खुदा इस सजा की रिहाई न दे। सिवाय तेरे कुछ भी दिखाई न दे, खुदा इस सजा से रिहाई न दे। मुझे तेरी हर बात पर है यकीन, मुझे तेरी हर बात पे है यकीन, अब मुझे तेरी हर बात पे है यकीन। सिवाय तेरे कुछ दिखाई न दे, अब खुदा के लिए तू सफाई न दे। मेरी आह सुनकर तू बेचैन होगा, मेरी आह सुनकर तू बेचैन होगा, दुआ है तुझे कुछ सुनाई न दे। सिवाय तेरे कुछ भी दिखाई न दे।

0: ठङ्गा हुँदैदेश मेरो एभरेस्ट
1: होइन कौशल्या मेमोरियल अस्पताल यही थियो त।
2: ओहो बाजे, अब उता आएन, ठ्याक्कै यता हेर्नुहोस् त पूर्वपट्टि।
3: हाम्रा सेवाहरू इन्टरनल मेडिसिन तथा फेमिली फिजिसियन सेवा, हार्ट जोड्नी तथा नसा रोग विशेषज्ञ सेवा, नाक कान घाँटी रोग विशेषज्ञ सेवा, प्रसूति तथा स्त्री रोग तथा मुख सम्बन्धी विशेष ल्याब एक्सरे र ख वर्गको एम्बुलेन्स सेवा, एयर कन्डिसन इमर्जेन्सी वार्ड, स्ट्यान्डर्ड वार्ड तथा क्याबिनहरू।
4: हजुर, कौशल्या मेमोरियल अस्पताल कोहलपुर नगरपालिका वडा नम्बर 9 हलदारपुर बाँके। सम्पर्क नम्बर 081414007 र 98482363।
5: ओहो, घर त बनायो तर आफ्नो मान्छे कोही आयो भने घर पत्ता लगाउने गाह्रो।
4: किन गाह्रो, मार्बल पत्थरमा नाम लेखाएर राखे पनि भइहाल्यो नि।
5: भन्न त सजिलो छ तर कहाँ खोज्न जाने होला?
4: तपाईँलाई थाहा छैन, नेपालगञ्ज फुलटेक्रा राप्ती रोडमा रहेको न्यू विश्वकर्मा कला सेन्टरमा मार्बल पत्थरमा नाम लेखाउनुका साथै तामा पित्तलमा कम्प्युटरद्वारा नाम लेखाइ गरिन्छ। समिल र सामुदायिक वनको टाचा बनाउनुका साथै विभिन्न किसिमका मार्बल सिमेन्टको मूर्ति पनि पाइन्छ नि।
6: प्रोप्राइटर राकेश कुमार विश्वकर्मा, व्यवस्थापक त्रिभुवन प्रसाद विश्वकर्मा, न्यू विश्वकर्मा कला सेन्टर, नेपालगञ्ज 5 बाँके।
3: सम्पर्क टेलिफोन नम्बर 081536410 र 98480-26435।
7: माया बाबु, टेलर के त सक्कु सामान हो गेल बा, अब मसिन कहाँ से नन्ना हो?
8: छी दादु, हो फे ठाहानी हो कि का उहट हो जे बीएस सिलाई मशीन सप्लायर्स।
7: बीएस सिलाई मशीन सप्लायर मा कौन कौन मेर के मशीन पैठे बाबु?
8: उहाँ त अनमोल उषा व ताज ब्रांड का संग मेर मेरी कंपनी का सिलाई मशीन बिक्री व मरमट कई जिठा। एक रख संग संग मशीन संबंधी सक्कु पाठ पुर्जा हो सामान फे पाजी था। अट्रकेल कहाँ हो, कुशल कारीगर हुकन से मरमट फे करा जिठा।
9: एक एक संगे दस्या देवारी हो छठ त्यौहार समय 5-30% समय ग्राहक उपकरण के छूट के व्यवस्था कैल बा।
7: बीएस सिलाई मशीन सप्लायर, घरबाई टोल 2, पीपल चौतरा, नेपालगंज बाँके। एक बेर सेवा करे के मौका जरूर देबी। प्रोप्राइटर भरत सिंह परियार। मोबाइल नंबर बा 98481-28318 और नंबर बा 98224-52478। एक बेर सेवा करे के मौका जरूर देबी।
10: पिछले सारे फिल्म लगाए दो हमार पिया, पिछले सारे फिल्म लगाए दो हमार पिया।
11: रेडियो कृष्ण सार FM 94 MHz, कृष्ण सार जस तेज।
12: रेडियो कृष्ण सार FM 94 MHz मा
13: कार्यक्रम द्वारे मुहारी

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं बर्जर पेंट्स।
1: रंग बहार रंग बहार
2: बर्जर संगे उपहार उपहार बम्पर मा यामाहा रेजियार
1: बर्जर पेंट्स ले घर रंगाउनु होस् र लकी ड्र मार्फत यामाहा रेजियार 125 स्कूटर बम्पर उपहार जित्ने मौका पाउनु होस्।
2: साथै 65 इन्च को स्मार्ट टीवी रेफ्रिजरेटर वाशिंग मशीन लगायत 350 भन्दा बढी आकर्षक उपहारहरु पनि।
1: घर रंगाऊ खुशी बनाऊ उपहार जित्ने अवसर पाऊ। बर्जर पेंट्स।

तुम्हारे मोहब्बत की बारिश में भीग जाऊं, तुम्हारे मोहब्बत की बारिश में भीग जाऊं, तुम्हारे इंतज़ार की धूप में जल भी जाऊं।

तुम्हारी महक इन हवाओं से चुरा लाऊं, तुम्हारी महक इन हवाओं से चुरा लाऊं, तुम्हारी अदा इन फिजाओं से छीन लाऊं, तुम्हारे जिंदगी में कुछ इस तरह मैं जरूरी हो जाऊं, तुम्हारे जिंदगी में कुछ इस तरह मैं जरूरी हो जाऊं, तुम्हारा जिक्र हो और पहचानी मैं जाऊं।

0: बीर डेंटल
1: नेपालगंज शहर में संचालित अत्याधुनिक सुविधा संपन्न बीर डेंटल में दात तथा मुख संबंधी संपूर्ण उपचार काठमांडू तथा भेरी अंचल अस्पताल का अनुभवी वरिष्ठ डाक्टर आरके लामिछाने द्वारा उपचार गरिन्छ।
2: डाक्टर लामिछाने द्वारा गरिने विशेष उपचारहरू दाँत सफा गर्ने, दाँत भर्ने, दाँत निकाल्ने, दुखेको दाँतको जराको उपचार, खाली ठाउँमा दुरुस्त प्राकृतिक जस्तै नक्कली दाँत राख्ने, बाङ्गो टिङ्गो तथा नमिलेको दाँत फिक्स अर्थोडन्टिक प्रविधिद्वारा मिलाउने, गिजाको रोग जस्तै गिजा सुन्निने, रगत आउने, पिप बग्ने, मुख गनाउने र दाँत हल्लिने समस्याको उपचार, पहेँलो खैरो दाँत, सानो र ठुलो दाँत, छिद्रा तथा ग्याप भएको दाँतलाई कस्मेटिक उपचार प्रविधिद्वारा राम्रो बनाउने, दाँत मुखको चोटपटक तथा बङ्गारका हड्डी भाँचिएको पनि उपचार हुने।
1: सम्पर्क बीर डेन्टल क्लिनिक भेरी अञ्चल अस्पतालबाट 150 मिटर त्रिभुवन चोक तर्फ।
2: फोन नम्बर 081-532-375। नेपालकै एकमात्र अत्याधुनिक डेन्टल क्लिनिक अब नेपालगञ्जमा। सन् 2016 डाक्टर लियोनार्ड लिङ्को फाउन्डेसनद्वारा बेस्ट डाक्टर ओआरद्वारा सम्मानित डाक्टर प्रतीक श्रेष्ठ, एनएमसी 19393, बिडिएस दिल्ली, एफएजिसी मणिपाल, सर्टिफाइड इम्प्लान्ट एन्ड लेजर डेन्टिस्ट्री अमेरिका, सर्टिफाइड बोटक्स एन्ड फिलर स्पेसलिस्ट युरोप, एडभान्स सर्टिफिकेट इन जेनरल डेन्टिस्ट्री क्यानाडा, मिनी रेजिडेन्सी इन इन्डो डेन्टिक्स साउथ कोरिया, यी विभिन्न देशहरूमा अध्ययन गरेका डाक्टर प्रतीक श्रेष्ठद्वारा उपचार गरिने अत्याधुनिक डेन्टल क्लिनिक अब नेपालगञ्जमा।
1: विशेषताहरू: दुखेको दाँतहरू जराबाट नै भरेर नदुख्ने बनाउने, बच्चाहरूको दुखेको दाँत जराबाट भर्ने, किरा लागेको दाँतलाई भर्ने, दाँत निकाल्ने, दाँतमा खोल लगाउने र दाँत नभएको ठाउँमा दाँत हाल्ने, मेटल क्राउन, बाङ्गो दाँतलाई तार बाँधेर सिधा गर्ने, वृद्ध अवस्थामा भएको बुढाबुढीको पुरा दाँतको सेट लगाउने, दाँतलाई प्रत्यारोपण गर्ने, चाउरी परेको अनुहारलाई राम्रो पार्ने, आँखा तल खाल्टो भएकोलाई भर्ने, सबै उपचारहरू दूरबीनबाट गरिने, डिजिटल एक्सरे सेवा।
3: सम्पर्क गणपति क्लिनिक, सुर्खेत रोड नेपालगञ्ज नर्सिङ होम नजिकै कुसुम पेट्रोल पम्पको सामुन्ने, पासङलाम रोड जाने बाटोमा। फोन नम्बर 081-531-366 र 98-085-49-451।
4: रंग बहार, रंग बहार।
5: बर्जर सँगै उपहारै उपहार। बम्परमा यामाहा रेजियर।
4: बर्जर पेन्सले घर रंगाउनुहोस् र लकी ड्र मार्फत यामाहा रेजियर 125 स्कुटर बम्पर उपहार जित्ने मौका पाउनुहोस्।
5: साथै 65 इन्चको स्मार्ट टिभी, रेफ्रिजरेटर, वाशिङ मसिन लगायत 350 भन्दा बढी आकर्षक उपहारहरू पनि। घर रंगाउ, खुशी बढाउ, उपहार जित्ने अवसर पाउ।
4: बर्जर पेन्स।
6: आमाको उपचार गरौँ भनेको कहाँ जाने होला?
7: कान्ति आरोग्य अस्पताल छँदैछ नि। पश्चिम नेपालकै अनुभवी र उत्कृष्ट विशेषज्ञ तथा शल्य चिकित्सकद्वारा विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पनि यही उपलब्ध छ।
6: हो र, यो अस्पतालमा के सुविधा छन् नि?
7: 24 घण्टा इमर्जेन्सी सेवा, दैनिक ओपिडी सेवा, दूरबीन तथा लेजर प्रविधिबाट शल्यक्रिया, जलेको घाउको उपचार गरिनुका साथै एनआइसियू, पिआइसियू, आइसियू, हाइटेक अपरेसन थिएटर र सुरक्षित प्रसूति सेवा पनि यही उपलब्ध छन्। अझ यहाँ त बालबालिका तथा नवजात शिशुहरूको सामान्यदेखि जटिल सबै रोगहरूको सबै किसिमको उपचार गरिन्छ नि।
6: त्यसो भए आमालाई लगेर आजै जानु पर्यो।
7: कान्ति आरोग्य अस्पताल, सुर्खेत रोड, नेपालगञ्ज। सबै किसिमका उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा एकै छाना मुनि।
6: सम्पर्क नम्बर 081-535-717।
8: बाबा के कान पिरात है, दवाई करावे खातिर कहाँ ले जाई?
9: बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहार केंद्र जाऊ न। यहाँ अनुभवी विशेषज्ञ और वरिष्ठ कान स्वास्थ्य प्राधिक लोगन से हर एक दिन कान परीक्षण किया जाता है। इतन कहाँ, यहाँ तो लंबे समय से कान पकते आवा, जीर्ण रोग, कान में ढूसी भवा, कान खजुआब, कान से कम सुनाई देव, कान बंद हो, बीमारी लोगों के दवाई दरमत और सुझाव सलाह देते हैं। और साथन लंबे समय से कान पकते आवा, कान के जाली में छेद भवा, कान के हड्डी गले वाला रोग के शल्य क्रिया द्वारा दवाई करत हैं। साथन कान कम सुनने वाले बीमारी लोगों के यहाँ कान में लगावे वाला सस्ता से लेके महंगा महंगा तक मेरे मेरे के मॉडल के कान की मशीन हेयरिंग एड बिरामी लोगों के इच्छा अनुसार उपलब्ध करावत है। बीटी, सीआईसी, आरआईसी जैसे मशीन भी यहाँ उपलब्ध है।
8: ए अस है तो बाबा के यहाँ ले जाए के दवाई करावे से बढ़िया से सुने लगी है तो?
9: हाँ तो समय में यहाँ दवाई करावे से दवाई दरमत संभव है। बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहार केन्द्र प्राली, नेपालगञ्ज 6 फुलटेकरा, आर्मी ब्यारेक के सामने, राप्ती रोड, बाँके। संचालक पूरन चौधरी। सम्पर्क नम्बर 98-480-2697, 98-580-2697 और 98-014-83-697।
10: बहिरोपन निवारण कार्यक्रम में यहाँ सहभागी हुआ जाए, नियमित रूप से कान के जांच करावा जाए।

0: रेडियो कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्ज कृष्णसार जस्तेज
1: रेडियो कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्ज मा
2: कार्यक्रम द्वारे मुहारी

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं बर्जर पेंट्स।
1: रंग बहार रंग बहार
2: बर्जर संगे उपहार उपहार बम्पर मा यामाहा रेजियार
1: बर्जर पेंट्स ले घर रंगाउनु होस् र लकी ड्र मार्फत यामाहा रेजियार 125 स्कूटर बम्पर उपहार जित्ने मौका पाउनु होस्।
2: साथै 65 इन्च को स्मार्ट टीवी रेफ्रिजरेटर वाशिंग मशीन लगायत 350 भन्दा बढी आकर्षक उपहारहरु पनि।
1: घर रंगाऊ खुशी बनाऊ उपहार जित्ने अवसर पाऊ। बर्जर पेंट्स।

अपने हाथों की लकीरों में बसा ले मुझको, अपने हाथों की लकीरों में बसा ले मुझको, मैं हूँ तेरी तो नसीब बना ले मुझको। मुझसे तो पूछने आया है वफा के माने, मुझसे तू पूछने आया है वफा के माने, ये तेरी सादा दिली मार न डाले मुझको। खुदा को खुद को मैं न बाट डालूं कहीं दामन दामन, खुद को मैं बाट न डालूं कहीं दामन दामन। कर दिया तूने गर हवाले मुझको,

आँखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, आँखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा। बेवक्त अगर जाऊंगा सब चौंक पड़ेंगे, बेवक्त अगर जाऊंगा सब चौंक पड़ेंगे, एक उम्र हुई दिन में कभी घर नहीं गया। जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नज़र है, जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नज़र है, आँखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा।

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 2 बजे को छ।
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी।

0: हमका बिहा के खातिर सोफा दराज डाइनिंग जस्ट सामान और ऑफिस के खातिर सामान खरीदे रहा है। कहाँ जाई तो ठीक रही, तनी बताई दियो हमका।
1: सुना जाए आपका हम बताई थे, आप नेपालगंज में यहाँ अपने घर के खातिर ऑफिस या तो दुकान के खातिर गुणस्तरीय फर्नीचर खरीदे चाह जाते तो अर्बन फर्नीचर एंड फर्निशिंग हब प्राली में यहाँ जावा जाए। हुआ पर यहाँ ऑर्डर के अनुसार बेड, सोफा, डाइनिंग टेबल, ऑफिस टेबल, ड्रेसिंग टेबल, दराज जस तमामन मेर के फर्नीचर के सामान मिलत है। उके साथ टिकाऊ सामान, आकर्षक डिजाइन और उत्कृष्ट फिनिशिंग के साथ बनावा भी जाता है।
0: किफायती मूल और मैत्रीपूर्ण सेवा के साथ आपकी आवश्यकता के हिसाब से फर्नीचर तैयार किया जाता है।
1: एक दफे सेवा करे मौका दीन जाए। संपर्क के खातिर सुरखेत रोड नेपालगंज बांके संपर्क नंबर 9844885375 और 9808254037।
2: नींद
0: भैया, बहुत दिन से महीनवारी में यहाँ गड़बड़ी, सफेद पानी बहाव और पेट पीराव समस्या से बहुत दुख पाए चुके हैं। कहाँ जाए तो बढ़िया रही।
3: हम भी पहले गैस्ट्रिक, बवासीर और पेट के समस्या से बहुत परेशान रहें। बाद में यहाँ नेपालगंज के मेडिकेयर क्लिनिक गए। वहाँ मर्दे और मेहरुए दोनों लोगों के समस्या के उपचार और ऑपरेशन एक ही जगह होते है। अनुभवी विशेषज्ञ डॉक्टर से सेवा मिले के बाद अब बहुत आराम हुआ है।
0: सही, वहाँ का सेवा मिलते है तो भैया?
3: सुनो, हुआ औरतन के बांझपन, सफेद पानी, महीनावारी में गड़बड़ी, गर्भवती जांच, बच्चादानी और स्तन संबंधी समस्या के उपचार होते है। और पुरुष या अन्य बीमारी लोगों के खातिर गैस्ट्रिक, बवासीर, हर्निया, अपेंडिक्स, थायराइड, पित्त थैली और शरीर में यहाँ गिल्टी और तमाम मेर के लैप्रोस्कोपिक और लेजर सर्जरी सेवा भी उपलब्ध है।
4: हाँ, मेडिकेयर क्लिनिक में यहाँ वरिष्ठ लैप्रोस्कोपिक दूरबीन और लेजर सर्जन डॉक्टर कमर हसन अंसारी और वरिष्ठ लैप्रोस्कोपिक स्त्री और कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमीरुन निशा से सेवा देते हैं। आप भी आज कोई भी चेक जांच और ऑपरेशन के खातिर नामदरता कह के तहे दिल हुआ जाए।
3: मेडिकेयर क्लिनिक नेपालगंज उप महानगर पालिका वाड़ा नंबर 11 बीपी चौक के नेरेन उप महानगर पालिका के कार्यालय के लाइन में यहाँ संपर्क नंबर 9749117886982242942377।
5: सबके संयुक्त आवाज मेडिकेयर क्लिनिक मर्दे और मेहरुए दोनों लोगों के स्वास्थ्य उपचार के विश्वसनीय गंतव्य।
6: सोचे भन्दा सस्तोमा हाई क्वालिटी का सोफा र फर्निचर चाहियो, आउनुहोस् सोफा हब नेपालगंज।
7: हरेक सामान को खरीद में 1,000 देखि 20,000 सम्म छूट, 10 देखि 15 वर्ष सम्म को वारेन्टी, साथ ही फ्री डेलीवरी को सुविधा पनि। अहिले थमाथम बिक्री भइरहेको छ।
6: स्थान राजा चोक राष्ट्रीय वाणिज्य बैंक को अगाडि।
7: संपर्क 9705118470।
6: सोफा हब नेपालगंज,
7: विश्वास में नंबर 1,
6: क्वालिटी में सब भन्दा बेस्ट।
0: खुशी के खबर, हम लोगन के अपने शहर नेपालगंज में यहाँ सालों से सेवा देते आवा रहा नेपालगंज नेशनल अस्पताल में यहाँ विशेषज्ञ डॉक्टर लोगन से दैनिक रूप में यहाँ तमामन स्वास्थ्य सेवा प्रदान होते आवा है।
3: ये अस्पताल में यहाँ दैनिक रूप से तमाम मेर के विशेषज्ञ लोगन से ओपीडी सेवा हो, एक साथ तमाम मेर के सेवा होत रहा जानकारी करावा चाह जात है। जैसे सर्जरी संबंधी संपूर्ण इलाज,
0: प्रसूति और महिला लोगन संबंधी संपूर्ण इलाज,
3: नस और हड्डी रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
0: मस्तिष्क और मानसिक रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
3: चर्म रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
0: नाक कान और गटई संबंधी संपूर्ण इलाज,
3: शुगर, ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, पेट, छाती, कलेजा संबंधी संपूर्ण इलाज,
0: पैथोलॉजी लैब संबंधी संपूर्ण चेक जांच किया जाते है।
3: वीडियो एक्सरे, डिजिटल एक्सरे और संपूर्ण सेवा सहित गुणस्तरीय अस्पताल के साथ हैं। हर एक महीना के अंतिम शुक्रवार काठमांडू मेडिसिटी अस्पताल से शुगर और थायराइड रोग के इलाज के खातिर डॉक्टर सुमन बराल आवश्यक जानकारी भी करावा जाता है।
0: नोट, ई अस्पताल में यहाँ कार्यरत संपूर्ण डॉक्टर लोगन से प्रत्येक महीना के अंतिम शनिवार निःशुल्क ओपीडी सेवा ले साथ जांच में यहाँ 20% छूट के व्यवस्था किया गया है।
3: संपर्क नंबर 9081536465, 9829488665 और 9842880465।

0: रेडियो कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्ज कृष्णसार जस तेज।
1: नमस्कार और स्वागत है कार्यक्रम दुआरे मुहारे में। आप लोग सुना चाहते अपने ही प्रिय स्टेशन रेडियो कृष्ण सार एफएम 94 मेगाहर्ज से प्रसारित वाला कार्यक्रम दुआरे।
2: हाय प्रज्ञा, सवेरे से रेडियो लिए बैठो, का सुना था?
3: अरे मामा, तुम नहीं जानत हो, कार्यक्रम दुआरे मुहारे आवत है।
2: ये कब और कौने दिन आवत है प्रज्ञा?
3: सुनो, बताई थे मामा, इतवार मंगल बुध के आवत है।
2: हाँ, आप लोग कार्यक्रम सुनेगा ना भूला जी, अपने प्रिय संचालिका चंदा जी के साथ में कार्यक्रम दुआरे मुहारे।
1: बदलना आता नहीं हमें मौसम की तरह, बदलना आता नहीं हमें मौसम की तरह, हर एक रूप में तेरा इंतजार करते हैं। बदलना आता नहीं हमें मौसम की तरह, हर एक रूप में तेरा इंतजार करते हैं।
2: कार्यक्रम दुआरे मुहारे हफ्ता में 3 दिन, इतवार के, बुध के, मंगल के, दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक कार्यक्रम सुने ना भूला जाए, धूम धड़ाका चंदा जी के साथ में।

0: एक कार्यक्रम के प्रायोजक हैं बर्जर पेंट्स।
1: रंग बहार
2: बर्जर संगे उपहार उपहार बम्पर मा यामाहा रेजियार
1: बर्जर पेंट्स ले घर रंगाउनु होस् र लकी ड्र मार्फत यामाहा रेजियार 125 स्कूटर बम्पर उपहार जित्ने मौका पाउनु होस्।
2: साथै 65 इन्च को स्मार्ट टीवी रेफ्रिजरेटर वाशिंग मशीन लगायत 350 भन्दा बढी आकर्षक उपहारहरु पनि।
1: घर रंगाऊ खुशी बढाऊ उपहार जित्ने अवसर पाऊ। बर्जर पेंट्स।

जिंदगी की राह में कई जिंदा एहसास हुए, जिंदगी की राह में कई जिंदा एहसास हुए, दूर हुए जितना उनसे उतना उनके पास हुए, घुल गए सपनों में कुछ कुछ ने दिल में पनाह ली, घुल गए सपनों में कुछ कुछ ने दिल में पनाह ली, कुछ दे गए दगा हमें कुछ पे विश्वास हुए, आई जब भी हवाएं दिल की खिड़कियां खोली, आई जब भी हवाएं दिल की खिड़कियां खोली, अंधेरों में करके दफन खुद उजियारे के खास हुए, बिखरे हुए पन्नों पर अक्स नज़र आते हैं, बिखरे हुए पन्नों पर अक्स नज़र आते हैं, कुछ ने खुशबू दी हमको कुछ सूखे गुलाब दिए।

0: जनता केबल 5 दशक देखी।
1: पिछले सारे फिल्म लगाए जो हमार पिया, पिछले सारे फिल्म लगाए जो हमार पिया।
2: रेडियो कृष्ण सार FM 94 MHz कृष्ण सार जस तेज।
3: रेडियो कृष्ण सार FM 94 MHz
4: कार्यक्रम द्वारे मुहारी

0: ये कार्यक्रम के प्रायोजक हैं बर्जर पेंट्स।
1: रंग बहार रंग बहार
2: बर्जर संगे उपहार उपहार बम्पर मा यामाहा रेजियर
1: बर्जर पेंट्स ले घर रंगाउनु होस् र लकी ड्र मार्फत यामाहा रेजियर 125 स्कूटर बम्पर उपहार जित्ने मौका पाउनु होस्।
2: साथै 65 इन्च को स्मार्ट टीवी रेफ्रिजरेटर वाशिंग मशीन लगायत 350 भन्दा बढी आकर्षक उपहारहरु पनि।
1: घर रंगाऊ खुशी बढाऊ उपहार जित्ने अवसर पाऊ। बर्जर पेंट्स।

उनसे बातें होती है पर दिल से नहीं, उनसे बातें होती है पर दिल से बात नहीं होती, उनसे बातें होती है पर दिल से बात नहीं होती, हर रोज अंधेरा छाता है पलकों में रात नहीं होती। बंजर आंखें बंजर है जमीन, बंजर आंखें बंजर है जमीन, करता न कोई मेरा यकीन। बादल छा जाते हैं अक्सर बरसात नहीं होती, बादल छा जाते हैं अक्सर बरसात नहीं होती, तेरे जीवन में है खुशियाँ तो चमकाती तेरी अखियाँ, तेरे जीवन में है खुशियाँ तो चमकाती तेरी अखियाँ, मेरी सुनी गतियों में मुलाकात नहीं होती, मेरी सुनी गतियों में मुलाकात नहीं होती।

0: हाय के गर्ने होला अब, सुगर पनि बढ्दैछ, थाइराइडको समस्या अझ छुट्टै छ, कति ठाउँमा देखाएँ तर भएन।
1: ए तिमी यति चिन्तित किन, के भयो फेरि?
0: के भने नि, डाक्टरले मलाई हार्मोनको समस्या छ भन्नुभयो, अनि त्यसैमा बच्चा नहुँदा मलाई झन् टेन्सन भइरहेको छ।
1: ए अब चिन्ता लिनु पर्दैन, मैले राम्रो खबर सुनेको छु।
0: कस्तो खबर?
1: अब प्रत्येक दिन सुगर, थाइराइड तथा हार्मोन रोगका विशेषज्ञ डाक्टर अल्ताबान राही, एमडी इन्टरनल मेडिसिन टियु, एन्डोक्राइनोलोजिस्ट सर गङ्गाराम हस्पिटल दिल्ली यहाँ नै सेवा दिनुहुन्छ।
0: ए साँच्चै?
1: अझ सुन, महिला बाझोपन तथा निसन्तान रोग सम्बन्धी पनि प्रत्येक दिन चेक जाँच तथा परामर्श सेवा पनि उपलब्ध छ।
0: ए त्यो त झन् राम्रो
1: हो नि। डाक्टर पुनम आचार्य एमबिबिएस, एमडी केयु, आइभीएफ स्पेसलिस्ट इन्डिया र डाक्टर सुरज राज भट्टराई एमबिबिएस, एमएस केयु, वरिष्ठ कन्सल्टेन्ट जनरल तथा ल्याप्रोस्कोपिक सर्जनबाट सेवा पाइन्छ।
0: वाह, अब त मलाई धेरै ढुक्क लाग्यो।
1: अझै अरू सेवाहरू पनि छन्, दैनिक ओपिडी सेवा, गुणस्तरीय फार्मेसी सेवा, भिडियो एक्सरे, एक्सरे, इसिजी तथा सम्पूर्ण प्याथोलोजी सम्बन्धी जाँच सेवा।
0: यो त पुरा प्याकेज जस्तै भयो नि।
1: हो त, अब ढिला नगर, जाऊ आजै गइहाल उपचार गर्न।
0: हजुर, आजै सम्पर्क गर्नुहोस् सुपर पोलिक्लिनिक एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टर, बिपी चोक, नेपालगञ्ज। फोन नम्बर 081531860 र 081531861।
1: अब चिन्ता होइन, समाधानको सही ठाउँ सुपर पोलिक्लिनिक।
2: नाक कान र घाँटीका रोगीहरूको लागि विशेष सूचना।
3: भेरी अञ्चल अस्पतालमा लामो समय काम गरी सेवा निवृत्त प्रमुख कन्सल्टेन्ट ईएनटी विशेषज्ञ डाक्टर रमेश कुमार श्रेष्ठ र हाल भेरी अञ्चल अस्पतालमा नाक कान घाँटी विभागमा कार्यरत ईएनटी कन्सल्टेन्ट डाक्टर सगुन श्रेष्ठसँग उपचारको लागि मिलिजुली मेडिकल हल इदगाह रोड नेपालगञ्जमा हप्ताको 7 दिन सेवा उपलब्ध छ। हाम्रा थप सेवाहरू: एक्सरे, इन्डोस्कोपी, प्रयोगशाला, अडियोग्राम तथा आवश्यक परेको खण्डमा बिरामीलाई अपरेसनको पनि व्यवस्था छ। विस्तृत जानकारीको लागि मिलिजुली मेडिकल हल इदगाह रोड नेपालगञ्ज, सम्पर्क फोन नम्बर 081531380, मोबाइल 98580-30479 र 98480-21380।
4: आमाको उपचार गरौँ भनेको कहाँ जाने होला?
5: कान्ति आरोग्य अस्पताल छँदैछ नि, पश्चिम नेपालकै अनुभवी र उत्कृष्ट विशेषज्ञ तथा शल्य चिकित्सकद्वारा विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पनि यही उपलब्ध छ।
4: हो र, यो अस्पतालमा के सुविधा छन् नि?
5: 24 घन्टा इमर्जेन्सी सेवा, दैनिक ओपिडी सेवा, दूरबीन तथा लेजर प्रविधिबाट शल्यक्रिया, जलेको घाउको उपचार गरिनुका साथै एनआइसियु, पिआइसियु, आइसियु, हाइटेक अपरेसन थिएटर र सुरक्षित प्रसुति सेवा पनि यही उपलब्ध छन्। अझ यहाँ त बालबालिका तथा नवजात शिशुहरूको सामान्यदेखि जटिल सबै रोगहरूको सबै किसिमको उपचार गरिन्छ नि।
4: त्यसो भए आमालाई लगेर आजै जानु पर्यो।
5: कान्ति आरोग्य अस्पताल सुर्खेत रोड नेपालगञ्ज, सबै किसिमका उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा एकै छाना मुनि।
4: सम्पर्क नम्बर 081535717।
6: बाबा के कान पीड़ा थे, दवाई करावे खातिर कहाँ ले जाई?
7: बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहार केंद्र जाऊ न, यहाँ अनुभवी विशेषज्ञ और वरिष्ठ कान स्वास्थ्य प्राधिक लोगन से हर एक दिन कान परीक्षण किया जाता है। इतन कहाँ, यहाँ तो लंबे समय से कान पकते आवा, जीर्ण रोग, कान में ढूसी भवा, कान खजुआब, कान से कम सुनाई देव, कान बंद हो, बीमारी लोगों के दवाई दर मत और सुझाव सलाह देते हैं। और साथ ही लंबे समय से कान पकते आवा, कान के जाली में छेद भवा, कान के हड्डी गले वाला रोग के शल्य क्रिया द्वारा दवाई करते हैं। साथ ही कान कम सुनने वाले बीमारी लोगों के यहाँ कान में लगावे वाला सस्ता से लेके महंगा महंगा तक मेरे मेरे के मॉडल के कान की मशीन हेयरिंग एड बिरामी लोगों के इच्छा अनुसार उपलब्ध करावत है। बीटी, सीआईसी, आरआईसी जैसे मशीन भी यहाँ उपलब्ध है।
6: ए अस है तो बाबा के यहाँ ले जाए के दवाई करावे से बढ़िया से सुने लगी है तो?
7: हाँ तो समय में यहाँ दवाई करावे से दवाई दर मत संभव है। बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहार केन्द्र प्राली, नेपालगञ्ज 6 फुलटेकरा, आर्मी ब्यारेक के सामने राप्ती रोड बाँके। संचालक पूरन चौधरी। सम्पर्क नम्बर 98480-2697, 98580-2697 और 98014-83697।
8: बहिरोपण निवारण कार्यक्रम में यहाँ सहभागी हुआ जाए, नियमित रूप से कान के जांच करावा जाए।
9: हाम्रो बिहे भएको पनि 8 वर्ष भइसक्यो। सबैले एउटै प्रश्न सोध्छन्, खुसीको खबर कहिले सुनाउने भनेर।
10: मलाई थाहा छ तिमी कति पीडामा छौ, तर हामीले अहिले आशा मार्नु हुँदैन।
9: कति अस्पताल धायौ, कति उपचार गरायौ, अब त सपना पनि अधुरै रहने हो कि जस्तो लाग्न थालेको छ।
10: होइन, हामीसँग अझै आशा छ। मैले शुभश्री आइबीएफ क्लिनिकको बारेमा धेरै सुनेको छु, जहाँ धेरै दम्पतिहरूको काख भरिएको छ।
11: सन्तान सुखको यात्रामा तपाईँको भरोसाको साथी शुभश्री आइबीएफ क्लिनिक, अनुभवी विशेषज्ञ चिकित्सक, आधुनिक प्रविधि र व्यक्तिगत हेरचाह सहित।
9: हाम्रो जीवनमा पनि आखिर त्यो दिन आयो।
10: धन्यवाद शुभश्री आइबीएफ, हाम्रो सपना साकार बनाइदिनु भएकोमा।
11: थप जानकारीका लागि शुभश्री आइबीएफ क्लिनिक, सोल्टी मोड, काठमाडौँ। फोन नम्बर 98 61 14 16 99।
12: रेडियो कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्ज, कृष्णसार जस तेज।
13: रेडियो कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्ज मा
14: कार्यक्रम द्वारे मुहारी
6: कार्यक्रम के प्रायोजक हैं बर्जर पेंट्स।
15: रंग बहार रंग बहार,
16: बर्जर संगे उपहार उपहार, बम्पर मा यामाहा रेजियर।
15: बर्जर पेंट्स ले घर रंगाउनु होस् र लकी ड्रा मार्फत यामाहा रेजियर 125 स्कूटर बम्पर उपहार जित्ने मौका पाउनु होस्।
16: साथै 65 इन्च को स्मार्ट टीवी, रेफ्रिजरेटर, वाशिंग मशीन लगायत 350 भन्दा बढी आकर्षक उपहारहरु पनि।
15: घर रंगाऊ, खुशी बढाऊ, उपहार जित्ने अवसर पाऊ। Bird Your Pants,

गम ना होने का कोई जश्न मनाए कैसे, याद आते ही नहीं तुम तो भुलाए कैसे, याद आते ही नहीं तुम तो भुलाए कैसे, हर रात सुलाने में जिन्हें जमाने लगे, ऐसी आँखों को सुलाएं तो सुलाए कैसे, ऐसी आँखों को सुलाएं तो सुलाए कैसे, याद आते ही नहीं तुम तो भुलाए कैसे, गम न होने का कोई जश्न मनाए कैसे।

0: उत्सवको अवसरमा प्रस्तुत छ सुविशु अपर्च्युनिटी। यस योजना अन्तर्गत ग्राहकहरूले पाउनुहुनेछ 25 MBPS इन्टरनेट र क्लियर टिभीको फुल HD प्याकेज प्रति महिना मात्र ₹1040 र 65 भन्दा बढी HD च्यानल भएको क्लियर टिभीको प्याकेज प्रति महिना ₹221। साथै दामी म्युजिकको प्रिमियम प्याकेज 3 महिनाका लागि निशुल्क। शर्त र नियमहरू लागू हुनेछन्। थप जानकारीका लागि www.subisu.net.np। सुविशु,
1: अपन स्वास्थ्य के ख्याल रखब सच्चा आत्मविश्वास होए। वही से तो नेपाल परिवार नियोजन संघ बाके शाखा विगत लंबा समय से आप लोगन के सेवा में यहाँ समर्पित है।
2: हमरे यहाँ पूर्ण गोपनीयता के साथ गर्भपतन, परिवार नियोजन के साधन, बच्चेदानी के मुंह और स्तन कैंसर के परीक्षण और यौन और प्रजनन स्वास्थ्य संबंधी परामर्श सेवा उपलब्ध है।
1: विशेष सुविधा,
2: अब हरेक इतवार के दोपहरे 3 बजे से 5 बजे तक स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संदेश आचार्य के द्वारा विशेष परामर्श और उपचारों भी पावा जाए।
3: देर न कीन जाए, आजे स्वास्थ्य परामर्श लीन जाए। पता नेपालगंज उप महानगर पालिका वार्ड नंबर 9 रामलीला रोड नापी शाखा के अगारी। फोन नंबर 081 530 598।

0: रंगा उदय देश मेरो एवरेस्ट
1: पिछले सारे फिल्म लगाए जो हमार पिया पिछले सारे फिल्म लगाए जो हमार पिया
2: रेडियो कृष्ण सार FM 94 मेगाहर्ज कृष्ण सार जस तेज
3: रेडियो कृष्ण सार FM 94 मेगाहर्ज मा
4: कार्यक्रम द्वारे मुहारी

0: ये कार्यक्रम के प्रायोजक हैं बर्जर पेंट्स।
1: रंग बहार
2: बर्जर संगे उपहारे उपहार बम्पर मा यामाहा रेजियार
1: बर्जर पेंट्स ले घर रंगाउनु होस् र लकी ड्र मार्फत यामाहा रेजियार 125 स्कूटर बम्पर उपहार जित्ने मौका पाउनु होस्।
2: साथै 65 इन्च को स्मार्ट टीवी रेफ्रिजरेटर वाशिंग मशीन लगायत 350 भन्दा बढी आकर्षक उपहारहरु पनि।
3: घर रंगाऊ खुशी बनाऊ उपहार जित्ने अवसर पाऊ।
1: बर्जर पेंट्स।

मायूसियों के दायरे बढ़ते चले गए, मायूसियों के दायरे बढ़ते चले गए, ये हाथ टूटी टहनी पकड़ते चले गए। किस्मत का लिखा कौन मिटा पाया है बोलो, किस्मत का लिखा कौन मिटा पाया है बोलो, हाथों की लकीरों से हम लड़ते चले गए। फिर से नए सफ़र में मुसाफिर निकल गया, फिर से नए सफ़र में मुसाफिर निकल गया, ख्वाबों के खेमे जड़ से उखड़ते चले गए। जब भी मिले तो हमने गले से लगा लिया, जब भी मिले तो हमने गले से लगा लिया, दुनिया के फेर में हमें जकड़ते चले गए। उनके दिलों में खोट भरी थी कगार तक, उनके दिलों में खोट भरी थी कगार तक, हम उनका भोला चेहरा पढ़ते चले गए।

हाँ तो साथी, अब हम कार्यक्रम के बिल्कुल अंत में पहुंच चुके हैं। तो ये कार्यक्रम सुन के साथ दे वाले संपूर्ण साथी लोगन का तहे दिल से धन्यवाद है। तो साथी, अब कल दोपहर 1 बजे कार्यक्रम दुआरे मुहरे लेके फिर मिले को वादा करते हैं। अंतिम गीत के साथ हम चंदा का दीहा जा विदा। नमस्कार।

0: बीर डेंटल
1: नेपालगंज शहर में संचालित अत्याधुनिक सुविधा संपन्न बीर डेंटल में दांत तथा मुख संबंधी संपूर्ण उपचार काठमांडू तथा भेरी अंचल अस्पताल का अनुभवी वरिष्ठ डाक्टर आरके लामिछानी द्वारा उपचार गरिन्छ।

0: डाक्टर लामिछानेद्वारा गरिने विशेष उपचारहरू: दाँत सफा गर्ने, दाँत भर्ने, दाँत निकाल्ने, दुखेको दाँतको जराको उपचार, खाली ठाउँमा दुरुस्त प्राकृतिक जस्तै नक्कली दाँत राख्ने, बाङ्गो टिङ्गो तथा नमिलेको दाँत फिक्स अर्थोडन्टिक प्रविधिद्वारा मिलाउने, गिजाको रोग जस्तै गिजा सुन्निने, रगत आउने, पिप बग्ने, मुख गनाउने र दाँत हल्लिने समस्याको उपचार, पहेँलो खैरो दाँत, सानो र ठुलो दाँत, छिद्रा तथा ग्याप भएको दाँतलाई कस्मेटिक उपचार प्रविधिद्वारा राम्रो बनाउने, दाँत मुखको चोटपटक तथा बङ्गारका हड्डी भाँचिएको पनि उपचार हुने।
1: सम्पर्क बियर डेन्टल क्लिनिक भेरी अञ्चल अस्पतालबाट 150 मिटर त्रिभुवन चोक तर्फ।
0: फोन नम्बर 081-532-375।
2: हमका बिहा के खातिर सोफा दराज, डाइनिंग जस्ट सामान और ऑफिस के खातिर सामान खरीदे रहा, कहाँ जाई तो ठीक रही, तनी बताई दियो हमका।
3: सुना जाए आपका, हम बताई थे आप नेपालगंज में ही अपने घर के खातिर, ऑफिस या तो दुकान के खातिर गुणस्तरीय फर्नीचर खरीदे चाह जाते तो अर्बन फर्नीचर एंड फर्निशिंग हब पराली में यहाँ जावा जाए। वहाँ पर यहाँ आर्डर के अनुसार बेड, सोफा, डाइनिंग टेबल, ऑफिस टेबल, ड्रेसिंग टेबल, दराज, जस तमामन मेर के फर्नीचर के सामान मिलत है। उके साथ टिकाऊ सामान, आकर्षक डिजाइन और उत्कृष्ट फिनिशिंग के साथ बनावा भी जाता है।
2: किफायती मूल और मैत्रीपूर्ण सेवा के साथ आपकी आवश्यकता के हिसाब से फर्नीचर तैयार किया जाता है।
3: एक दफे सेवा करे मौका दीन जाए। संपर्क के खातिर सुर्खेत रोड नेपालगंज बांके, संपर्क नंबर 98-44-88-35-75 और 98-08-25-40-37।
4: नींद
2: बाबा के कान पिरात है, दवाई करावे खातिर कहाँ ले जाई?
5: बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहर केंद्र जाऊ न, यहाँ अनुभवी विशेषज्ञ और वरिष्ठ कान स्वास्थ्य प्राधिक लोगन से हर एक दिन कान परीक्षण किया जाता है। इतन कहाँ, यहाँ तो लंबे समय से कान पकते आवा, जीर्ण रोग, कान में यहाँ ढूसी भवा, कान खजुआब, कान से कम सुनाई देव, कान बंद हो, बीमारी लोगों के दवाई दरमत और सुझाव सलाह देते हैं। और साथ ही लंबे समय से कान पकते आवा, कान के जाली में छेद भवा, कान के हड्डी गले वाला रोग के शल्य क्रिया द्वारा दवाई करते हैं। साथ ही कान कम सुनने वाले बीमारी लोगों के यहाँ कान में लगावे वाला सस्ता से लेके महंगा महंगा तक मेरे मेरे के मॉडल के कान की मशीन हेयरिंग एड बिरामी लोगों के इच्छा अनुसार उपलब्ध करावत है। बीटी, सीआईसी, आरआईसी जैसे मशीन भी यहाँ उपलब्ध है।
2: ए अस है तो बाबा के यहाँ ले जाए के दवाई करावे से बढ़िया से सुने लगी है तो।
5: हाँ तो समय में यहाँ दवाई करावे, दवाई दरमत संभव है। बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहर केंद्र प्राली, नेपालगंज 6 फुलटेकरा, आर्मी बैरक के सामने, राप्ती रोड बांके। संचालक पूरन चौधरी। संपर्क नंबर 98-480-2697, 98-580-2397 और 98-014-83-697।
6: बहिरोपण निवारण कार्यक्रम में यहाँ सहभागी हुआ जाए, नियमित रूप से कान के जांच करावा जाए।
2: भैया बहुत दिन से महिनवारी में यहाँ गड़बड़ी, सफेद पानी बहाव और पेट पीराव समस्या से बहुत दुख पाए चुके हैं, कहाँ जाए तो बढ़िया रही।
5: हम भी पहले गैस्ट्रिक, बवासीर और पेट के समस्या से बहुत परेशान रहें, बाद में यहाँ नेपालगंज के मेडिकेयर क्लिनिक गए। वहाँ मर्दे और मेहरुए दोनों लोगों के समस्या के उपचार और ऑपरेशन एक ही जगह होते है। अनुभवी विशेषज्ञ डॉक्टर से सेवा मिले के बाद अब बहुत आराम हुआ है।
2: सही, वहाँ का सेवा मिलते है तो भैया?
5: सुनो, हुआ औरतन के बाँझपन, सफेद पानी, महीनावारी में गड़बड़ी, गर्भवती जांच, बच्चादानी और स्तन संबंधी समस्या के उपचार होते है। और पुरुष या अन्य बीमारी लोगों के खातिर गैस्ट्रिक, बवासीर, हर्निया, अपेंडिक्स, थायराइड, पित्त थैली और शरीर में यहाँ गिल्टी और तमाम मेर के लैप्रोस्कोपिक और लेजर सर्जरी सेवा भी उपलब्ध है।
7: हाँ, मेडिकेयर क्लिनिक में यहाँ वरिष्ठ लैप्रोस्कोपिक दूरबीन और लेजर सर्जन डॉक्टर कमर हसन अंसारी और वरिष्ठ लैप्रोस्कोपिक स्त्री और कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमीरुन निशा से सेवा देते हैं। आप भी आज कोई भी चेक जांच और ऑपरेशन के खातिर नाम दर्ता करके तहे दिल हुआ जाए।
5: मेडिकेयर क्लिनिक नेपालगंज उप महानगर पालिका वाड़ा नंबर 11 बीपी चौक के नेरेन उप महानगर पालिका के कार्यालय के लाइन में यहाँ। संपर्क नंबर 97-46-11-786, 98-224-92-377।
6: सबके संयुक्त आवाज मेडिकेयर क्लिनिक मर्दे और मेहरुए दोनों लोगों के स्वास्थ्य उपचार के विश्वसनीय गंतव्य।

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 4 बजेको छ।
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी।
2: समय बदलियो, पुस्ता फेरियो, तर साथ साथ उस्तै छ।

0: जनता केबल 5 दशक देखी।
1: यो कृष्ण सार एफएम
2: 94 मेगाहर्ज कृष्ण सार जत्तिकै तेज।

0: बालिकाको भविष्य जोगाउँ।
1: सामाजिक विकास मञ्च एसडीएफ बाँके, ओल्ड भिजन इन्टरनेशनल नेपाल र रेडियो कृष्णसार एफएम द्वारा जनहितमा जारी सन्देश।
2: यो कृष्णसार एफएम
3: 94 मेगाहर्ज कृष्णसार जत्तिकै तेज।

0: अया कान दुखेर हैरान भइराछ, के गर्ने कहाँ जाने होला।
1: बहिनी किन चिन्ता लिनुहुन्छ, बिर्नोज कान स्वास्थ्य सामुदायिक सेवा हुँदाहुँदै हाम्रा सेवाहरू नाक कान घाँटी

0: रंगा उदय देश मेरो एवरेस्ट
1: यो कृष्ण सार एफएम
2: 94 मेगाहर्ज कृष्ण सार जत्तिकै तेज।

0: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक
1: टाइम चेक अहिले ठीक 10 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी